0: Funding for Here and Now comes from Schwab, offering the Schwab Teen Investor Account, where teens can gain hands-on investing experience. It's co-owned by parents and teens, so parents can monitor the account while teens can learn how to manage money. More at schwab.com.
1: आप सुन रहे हैं KUOW FM सियाटल में, KUOW टमवाटर में और KQOW बेलिंगम में. यू आर लिसनिंग टू KUOW FM इन सियाटल, KUOW टमवाटर, KQOW इन बेलिंगम.
2: On Sound Politics.